0: नमस्कार
1: रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैठे थोप्लो 7 MHz मुपदी प्रसाद सागकोट आज विक्रम सम्मत 2083 साल भाद्र शुक्ल पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 24 तारीख आश्विन 8 गते बिहीबार त्रयोदशी तिथि अब स्तुति गरौं
0: आयु द्रोण कुमार कैसरिया साक्षेण कल्पय भरी।

सारी छयाहुन राजा नौशकाय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाय नै परेका घरे मन्दाकुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सदवा तकै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित।

सहित वायु शरी हुन गया हनुमन्त सहित आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उड्थ्या ती आकाशमा सीताजी कन भेटी फर्की कन फेर रामचन्द्रका पासमा।

0: हरि परमात्मा।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शङ्खका पाला भूषित करौ, मालस्ती माला धरौ, देवौ द्वारौ तिसमा सानन निलौ, नागरी गोवर्धनौ, तिरिरक्षे बलिदक्षे।